0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: यति बेला दिउँसोको

रेडियो लुम्बिनी, रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज़ शांति को आवाज़।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: हर एक स्पेंडिंग मा कलेक्टिंग पॉइंट्स।